0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात यूएई नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा निवेश प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur.

0: प्रलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापना कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत षट्त्रिंशत् होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् एकादशोत्तर एकशतं जनाः मृताः, द्विशताधिकाः जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी नेरं काले 7 मणि।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: நேயர்களின் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விவரம். நிகழ்ச்சி நிரல் காலை 7:25 திரை இசை, 7:30 ஆட்சவிரை செய்தி தொகுப்பு டெல்லி என்ற, 8:30 திரை கானம், 9 அரங்கிசை. இதில் எம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் நாகஸ்வர இசை இடம்பெறும். மேல்சானங்குப்பம் எஸ் கஜேந்திரன் அவர்கள் தபல். 10:10 விஸ்வ தர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரை கானம், 11:30 மல்லே பூதண்டா. தெலுங்கு நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் கே சுனில்குமார் அவர்கள் வழங்கும் உரையினை கேட்கலாம். 12 நிகழ்ச்சி நிரலை தொடர்ந்து திரை கானம். 12:50 மெல்லிசை, பிற்பகல் 1:10 இசை மலர். இதில் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பாட்டு, டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், எம் குருராஜ் அவர்கள் மிருதங்கம். இரண்டு:30 திரை கானம், 3 மதுரம் மதுரம் இ சமயம் தெலுங்கு நிகழ்ச்சி, 4:10 தேநீர் நேரம், 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ், 4:25 ரோஸ்கர் சமாச்சார், 4:30 பரிக்கிரமா. இவை மூன்றும் டெல்லி அஞ்சல். மாலை 5 அரங்கிசை, கங்கா ரங்கநாதன் அவர்களின் பாட்டு, வி ரவி அவர்கள் வயலின், பாபநாசமார்குமார் அவர்கள் மிருதங்கம். 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல் தொடர்ந்து திரை இசை பாடல்கள். 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல். 7:10 இளைய பாரதம், இதில் மனம் மலரும் தருணம், கவிதை வாசிப்பு. பங்கேற்பவர்கள் பி ஆர் கேத்தரின், பி வளர்மதி, இ விக்னேஸ்வரி ஆகியோர். 7:50 செய்தி கதமம், 8:10 திரை கானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கரண்ட் அஃபேர்ஸ், 10:10 விஸ்வ தர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், இவையாவும் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 திரை கானம். நேர்களே, இதுவரை இந்த அலைவரிசையில்

नमस्कार, सुप्रभात। नई सुबह की पहली किरण हमें ये याद दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम लेकर आए हैं आपका

0: देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता सर्वोपरि और जन केंद्रित ब्रिक्स दृष्टिकोण से प्रेरित है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वाले के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके।
2: The Enforcement Directorate, ED, has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. The ED questioned him at the CGO complex in Kolkata since yesterday morning after he appeared before the agency. Biswas was arrested after being interrogated for more than 10.5 hours. He will be produced before a court today. The ED had summoned Biswas, former officer in charge of Kalighat Police Station, several times for questioning as part of its money laundering investigation into an alleged criminal-linked syndicate run by Sona Pappu, alias Biswajit Poddar. However, he had repeatedly skipped the summons.
0: आयुष मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आयुष ज्ञान प्रणालियों का कई भारतीय भाषाओं में तेजी से लिप्यंतरण और अनुवाद करना है।
2: European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin intended for human consumption to the EU from September 2026. The revised draft list follows compliance measures undertaken by India in line with the European Commission delegated regulation. The ministry said that India's proposed inclusion is a major positive development for the country's seafood export sector. The European Union is one of the key destinations for Indian seafood exports.
0: उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है। उधमपुर जिला प्रशासन ने मोंगरी के सरडब्बर क्षेत्र में होने वाले इस धार्मिक आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की प्रथमा तिथि से तृतीया तक किया जाता है।
3: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
2: In Keralam, the hill shrine of Shabrimala was opened for Edvam monthly pujas last evening. Darshan is available from 5 a.m. onwards and the temple will be closed at 10 p.m. on 19th. Virtual queue booking is available for pilgrims through online.
0: और अब खेल खबर की ओर रुख करते हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार

0: वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फोंग नगा नुगो को हराया। 12 मई को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है।
1: In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing 201 for victory, Mumbai Indians overhauled the target with 6 wickets in hand and 1 ball to spare. Earlier put into bat, Punjab Kings scored 200 for 8 in the stipulated 20 overs. Unbeaten Tilak Verma contributed brilliant 75 off 33. He was adjudged player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings in Lucknow at 7:30 p.m.
0: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। आज से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत की ईंधन आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री के 7 अपीलों से प्रेरित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ अक्षित कुमार वैद्यान।
0: राजधानी दिल्ली में अब सार्वजनिक परिवहन का सफर और भी हरित तथा आधुनिक होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC आज से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेगी।
1: And Vaishnavi, since you've been informing us about the austerity measures and about, encouragement to the use of public transport. Mm-hmm. So I have a similar news from Hyderabad, where the Telangana governor, Shiv Pratap Shukla, has made a special appeal to citizens to save fuel and protect the country's money. He released a video message on Thursday. The governor said Prime Minister Narendra Modi has set an example by using fewer vehicles. Following this, the governor himself has reduced vehicle usage at his official residence, Lok Bhavan. He has ordered a 50% cut in vehicle usage there. The governor pointed out that the world is facing an energy crisis because of conflicts between countries. He stressed the importance of saving foreign exchange and protecting India's currency value. He urged every citizen to act responsibly.
0: और अब मुंबई की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP को 1 जुलाई 2026 से अनिवार्य कर दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाना, वाहन चोरी को कम करना और वाहनों की पहचान व ट्रैकिंग को अधिक सुरक्षित बनाना है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से निर्धारित समय सीमा 30 जून 2026 तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से HSRP लगवाने की अपील की है।
1: All right, let's take our listeners to news from Chennai now. Immigration officials have detained at least 17 foreign passport holders, including a woman, on suspicion that they may have voted in the recently concluded assembly elections in Tamil Nadu using forged documents. The detained persons have been handed over to the police for further questioning. 15 of them were intercepted at Chennai airport over the past few days while attempting to return to their respective countries

0: including Canada, Sri Lanka and Australia. Two others were detained at the Madurai airport.
1: और कोलकाता की ओर रुख करते हैं तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जल्द ही 181 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि किसी भी परेशानी या आपात स्थिति में महिलाएं दिन या रात किसी भी समय इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। कॉल मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन के हेल्प डेस्क जियो टैगिंग तकनीक की मदद से तुरंत पीड़िता तक पहुंचेंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
0: That's indeed very, very laudable, Vaishnavi. And Additional Chief Secretary, Energy and KPCL Managing Director Gaurav Gupta lauded the contribution of women employees and engineers in Karnataka Power Corporation Limited, KPCL, during the International Women's Day 2026 celebrations held at Bharatiya Vidya Bhavan in Bengaluru. He said women officers and staff have played a major role in achieving maximum power generation and are now excelling in leadership positions across the corporation. The Bangalore Water Supply and Sewage Board, BWSSB, has used advanced robotic technology to inspect underground pipelines, avoiding road excavation at 399 locations across Bengaluru in the last 6 months. Launched by Deputy Chief Minister D.K. Sivakumar in November 2025, the initiative enabled inspection of over 32 kilometers of pipelines and detection of 394 defects without disrupting traffic or damaging roads. We have a news update from the state as well. Oil companies have raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each amid spike in global energy prices. The petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similarly, the petrol price in Mumbai has been raised to 106.68 rupees per litre, while the diesel price has been increased to 93.14 rupees per litre. In Kolkata, the petrol price has been increased to 108.74 rupees per litre, while the diesel price will now be 95.13 rupees per litre.
1: सरबजीत, अब मौसम का हाल जान लेते हैं और श्रोताओं को भी बताते चलते हैं। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और बात करें कोलकाता की तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़कने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: So Vaishnavi, you are promising some respite for our Delhiites, all right? Chennai is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is also expected to have thunderstorm accompanied with lightning. Minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum may go up to 34 degrees. Hyderabad is expected to witness partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperatures will hover between minimum of 28 degrees and a maximum of around 39 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब बात करते हैं 15 मई से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं की जिन्होंने अपने समय में दुनिया को नई सोच, नई पहचान और नई प्रेरणा देने का काम किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सरबजीत, आइए जानते हैं कि आज के दिन की क्या विशेषता है। श्रोताओं, आज की तेज भागती जिंदगी में हम सब अपने काम, मोबाइल और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने ही परिवार के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन सच यही है कि कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, अगर परिवार साथ हो तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। इसी रिश्ते, अपनापन और एकजुटता के महत्व को समझाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोगों को परिवार की अहमियत और समाज में उसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। सरबजीत, अगर हम देखें तो परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं होता है, बल्कि ये वो एहसास है जहाँ हमें बिना शर्त अपनापन, भरोसा और

0: सहारा मिलता है।
1: बिल्कुल, और जैसे आपने एहसास का वर्णन किया, सो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, वैल्यूज, सोशल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट ऑल एम्ब्रेसेस द आइडिया ऑफ फैमिली। एंड एज हैज बीन सो राइटली सेड, इट डिडंट मैटर हाउ बिग आवर हाउस वाज, इट मैटर्ड that there was love in it, and that's what the family brings all about.
0: बिल्कुल श्रोताओं, कभी साथ बैठकर खाना खाना, माता पिता से खुलकर बातें करना या बुजुर्गों की कहानियां सुनना, यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम अपने परिवार को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन भी दें, क्योंकि परिवार से बड़ी ताकत शायद दुनिया में कोई नहीं है।
1: All right, moving on in this list of important events that happened on the 15th of May this year, this day rather, 1756, England declared war on France, officially began the Seven Years' War.
0: वहीं 1878 में आज ही के दिन भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इस समाज ने सामाजिक सुधार, शिक्षा और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: 1928, 15th May, Mickey and Minnie Mouse made their first appearance in the silent short film Plane Crazy.
0: वही 1930 में एलेन चर्च यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान में भरने दुनिया की पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट बनी। उन्होंने विमान सेवाओं में महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले थे।
1: 1940 on this day, Richard and Morris McDonald opened the first McDonald's restaurant in California.
0: 1948 में आज ही के दिन इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद मिस्र, सीरिया और इराक समेत कई अरब देशों ने हमला किया था, जिसके साथ ही प्रथम अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई थी। और आगे बढ़ते हैं तो 1949 में मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी, का औपचारिक रूप से वृहद राजस्थान राज्य में विलय हुआ था। ये राजस्थान के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
1: 15th May 1958, the Gift Tax Act was introduced in India to regulate property transfers.
0: और 2005 में लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एयर इंडिया का विमान कनाडा पहुंचा। इसे भारत और कनाडा के बीच विमान सेवाओं की आपसी के वापसी के रूप में देखा गया था। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज ही के दिन किन खास व्यक्तियों की जयंती या पुण्यतिथि है। शब्दों के भावनाओं की ताकत देने वाले महान साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही की आज पुण्यतिथि है। वे उड़िया साहित्य के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, साहित्य की लगभग हर विधा में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में समाज, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति माटीरा मणिषा आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उन्हें उड़िया साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। कालिंदी चरण पाणिग्रही को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
1: एंड वैष्णवी, टेकिंग अस बियॉन्ड बैंकिंग आवर्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग आवर नीड्स फॉर कैश, जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरन, वी आर पेइंग हिज ट्रिब्यूट्स टू हिम। टुडे इज शेपर्ड बैरन्स डेथ एनिवर्सरी। Shepard was an Indian-born British inventor who led the team that installed the first cash machine, sometimes referred to as the automated teller machine, anytime money or the ATM. So, John Adrian Shepard Baron was born on 23rd June 1925 in Shillong, and he conceived the idea for a self-service machine dispensing cash whilst lying in the bath. And this is very interesting that he was considering the problem of bank opening hours, having turned up at a bank after closing time one day and found himself unable to withdraw money. So Shepard Baron stated that he was inspired by chocolate vending machines. He said, "It struck me there must be a way I could get my own money anywhere in the world." So this idea hit upon him, and he, instead of chocolate bars, he replaced this machine with cash, and that's how we got the idea of the ATM.
0: कुछ लोग सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान सैन्य अधिकारी थे फील्ड मार्शल कोंडेडप्पा मडप्पा करियप्पा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त करने वाले करियप्पा ने

0: भारतीय सेना को नई पहचान और मजबूत दिशा दी। वे मानते थे कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और देश के प्रति समर्पण होता है। सैनिकों के बीच वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक माने जाते थे। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा और योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जाबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे आईएनएस कुकरी के कप्तान थे। युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, तब उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने की सबसे पहले महत्व दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए थे।
1: वैष्णवी, सिंस यू ऑलरेडी सेट द स्टेज फॉर रिमेम्बरिंग द रेवोल्यूशनरीज हु यू नो फॉट फॉर द कंट्री, लेड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू पे आवर ट्रिब्यूट्स एट दिस पॉइंट टू द ग्रेट सुखदेव। टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी।
2: ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा।
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और क्रांति की गूंज सुनाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी क्रांति की आग को अपने साहस और जुनून से और प्रज्वलित करने वाले महान क्रांतिकारी थे सुखदेव थापर। वे उन युवाओं में शामिल थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना जीवन देश की आजादी के नाम कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ साथियों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि देश के लिए एक साझा सपने की थी। वे बेहद तेज बुद्धि, निडर सोच और मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजी हुकूमत उनके नाम से घबराने लगी थी क्योंकि वे सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपने विचारों से भी लोगों को जागरूक कर रहे थे। आज भी सुखदेव का नाम सुनते ही युवाओं के भीतर देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना जाग उठती है।
2: अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा ना अब सरफरो।
1: और वैष्णवी, आपने कहा कि देशवासियों का सिर झुक जाता है नमन से सुखदेव का नाम याद कर, और आपने यूथ की बात की तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देयर इज द नेशनल मार्टर्स मेमोरियल एट हुसैनावाला वेयर सुखदेव अलॉन्ग विद भगत सिंह एंड राजगुरु वॉज क्रिमेटेड। सो द कंट्री रिमेंबर्स दीज बिग नेम्स इन इट्स ओन स्पेशल वेज। Listeners, we are also paying tributes to Sir Rajendranath Mukherjee. Today is his death anniversary. He was a pioneering industrialist, and along with Sir Thomas Aquin Martin, Sir Rajendranath Mukherjee contributed to the success of Bengal Iron at Kulti, and later he also contributed in building the Howrah Bridge at Kolkata. Listeners, time now to remember a very, very iconic personality from Bollywood, and that is Mahipal. Today is his death anniversary. He worked in films like Paras Mani, Cobra Girl, Jantar Mantar, Arabian Nights, and Ali Baba and 40 Thieves. We have a collection of songs here picturized on this great actor.

0: And Vaishnavi, today is the birthday of the beautiful Madhuri Dixit, and many, many good wishes to the beautiful and very talented Madhuri Dixit from the entire team of Art Savere.
1: सरबजीत, अगर हम बात करें माधुरी दीक्षित की, तो तेजाब फिल्म का गाना एक दो तीन हो या दिल की मासूमियत, हम आपके हैं कौन की निशा हो या देवदास का शाही अंदाज, हर किरदार में माधुरी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। आइए सुनते हैं उनपे फिल्माए गए खूबसूरत गीत। चाँ। चाँ।

0: इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: Yes, listeners, but you stay tuned for Samachar Prabhat and Morning News in English. Have a great day.
0: Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य

0: सहित जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर

0: लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान

0: ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: தென்றல் வரும் தெரு படத்திற்காக ஸ்வர்ணலதா பாடியுள்ள பாடல்.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை எம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டோம். மேல்சாணாங்குப்பம் எஸ் கஜேந்திரன் அவர்கள் தவில்.
1: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 மெகாஹர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை. நினைவூட்டுகிறோம் நேயர்களே, இன்று பிற்பகல் 1:10 இசை மலரில் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், எம் குருராஜ் அவர்கள் மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और

0: डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: for the upcoming National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, examination. During the meeting, detailed discussions were held on various aspects of conducting the NEET examination smoothly and efficiently. Oil companies have raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each amid spike in global energy prices. The petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similarly, the petrol price in Mumbai will now cost 106.68 rupees per litre, while the diesel price has been hiked to 93.14 rupees per litre. In Kolkata, the petrol price has been increased to 108.74 rupees per litre, while the diesel price will now be 95.13 rupees per litre. In Chennai, the petrol price has been raised to 103.77 rupees per litre and diesel price has been increased to 95.35 rupees per litre. In a major step towards strengthening India's indigenous defence and aerospace capabilities, Defence Minister Rajnath Singh will lay foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Programme Facility at Puttaparthi in Sri Sathya Sai district of Andhra Pradesh along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, said, "Advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximum permissible quantity of 100 kilograms." European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin intended for human consumption to the EU from September 2026. The Enforcement Directorate has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. The ED questioned him at the CGO complex in Kolkata since yesterday morning after he appeared before the agency. Biswas was arrested after being interrogated for more than 10 and a half hours. Indian Wushu player Aparna Dhaya clinched a gold medal in the women's 52 kilograms category at the 11th Sanda World Cup in Macau yesterday. Aparna beat reigning world champion Shi Phyong Yang Gong of Vietnam in straight sets in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में किस लोगों की मौत 45 घायल अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई के लिए रवाना हो गए हैं जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा निवेश प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर

0: में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज ही नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी रविवार को स्वीडन के गोथिनबर्ग जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे 19 मई को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के रूप में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरु मध्य खुला रहना चाहिए। चीन ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने में भी रुचि दिखाई। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर लगाए उच्च शुल्कों को समाप्त कर दिया था, जबकि चीन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित न करने पर सहमत हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को बताया कि चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है, जो लगभग एक दशक में बोइंग की पहली बड़ी खरीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: अमेरिका के न्याय विभाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दायर मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी अनुशासनात्मक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
4: ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार कार्यालय के उस अधिकार को चुनौती देता है जो अमेरिका में अधिवक्ताओं के लिए नैतिकता और कदाचार के मामलों की जांच करता है। मुकदमे में मुख्य रूप से न्याय विभाग के पूर्व अधिवक्ता जेफ्री क्लार्क का नाम शामिल है, जिन पर वर्ष 2020 में चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। मुकदमे में ट्रंप के वफादार और वर्तमान में क्षमादान मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एड मार्टिन का भी नाम शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीसी के अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या संवैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन किया है या नहीं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के मद्देनजर क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने समकक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी चर्चा की। अमरीका ने क्यूबा को ईंधन संकट से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता की पेशकश को नवीनीकृत किया है। क्यूबा ने कहा है कि वे सहायता पर चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
5: यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में घर, एक स्कूल, एक पशु अस्पताल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें आवासीय क्षेत्रों में गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस युद्ध समाप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। उधर रूस ने कहा

0: कि ये हमले यूक्रेन की सेना को समर्थन देने वाले सैन्य और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने वाशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता की। इसमें हिजबुल्ला को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई। वार्ता आज भी जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं हैं।
2: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर

0: अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं हैं।
1: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर और कड़े हमले करने का आदेश दिया। तब से इसराइल की सेना ने लेबनान से बार बार रॉकेट लॉन्च होने की खबर दी है और कहा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल ने इस पर्वतरोहण सत्र में रिकॉर्ड 492 पर्वतरोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं। ये आंकड़ा 2023 में जारी किए गए 489 अनुमति पत्रों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वीं सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगो को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलू जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जबकि सांडा एक आधुनिक बिना हथियार वाली स्पर्धा है। इसमें मुक्का मारना, लात मारना, फेंकना, कुश्ती और बचाव की तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: காதல் ரோஜாவே படத்திற்காக SP பாலசுப்ரமணியம் சித்ரா.

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 10:43 நொடி. ஆகாஷவாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் சுகமான ராகங்கள் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கே ஜே யேசுதாஸ் குரலில் ஒலிக்க வருகிறது இளமை காலங்கள் படப்பாடல்.

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: அடுத்து சலங்கை ஒலிப்பட பாடல். பாடியிருப்பவர்கள் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம், எஸ். ஜானகி.

0: நம் வீடு மட்டுமல்ல, நம் நாட்டின் சுத்தமும் நம் அனைவரது கடமை. தூய்மையான பாரதம் நமது கௌரவம்.
1: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
2: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे।

0: जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashvani News from Abu Dhabi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The National Testing Agency NTA has announced that the medical entrance exam NEET UG 2026 will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA.

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में

बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்றைய இசை மலரில் இதுவரை சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பாட்டு கேட்டும், டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், எம் குருராஜ் அவர்கள் மிருதங்கம். நினைவூட்டுகிறோம் நேர்களை, இன்று மாலை 5 மணிக்கு அரங்கிசையில் கங்கா ரங்கநாதன் அவர்களின் பாட்டு, வி வி ரவி அவர்கள் வயலின், பாபநாசமார் குமார் அவர்கள் மிருதங்கம். 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: குட் ஆஃப்டர்நூன், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி அண்ட் ஐ ஆம் வல்சா வில்லியம்ஸ் வித் தி மிட் டே நியூஸ். தி ஹெட்லைன்ஸ். Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defense, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Ratindra Basu elected as new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a 6-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi has since met President Sheikh Mohammed bin Zayed, with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as brother, he praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates, and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict.
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Our West Asia correspondent brings you more details on the Prime Minister's visit.
3: The talks have already yielded concrete outcomes. The two sides signed a framework agreement for strategic defense partnership, a significant step that institutionalizes security cooperation between the two countries. A memorandum of understanding on strategic petroleum reserves was also concluded, alongside a separate agreement on liquefied petroleum gas supplies, moves that directly addresses India's energy security concerns amid ongoing West Asia's tensions. The two countries further signed an MOU to establish a ship repair cluster at Vatnagar on India's western coast. On the investment front, the UAE announced commitments worth $5 billion to Indian infrastructure. Prime Minister Modi also noted that the comprehensive strategic partnership between India and the UAE continues to grow stronger across multiple sectors. This is

0: commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की एक रिपोर्ट
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज

0: किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व

0: दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित

0: देश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल

0: विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: பையா திரைப்படத்திற்காக அரிச்சரண் தன்வி பாடியிருக்கும் பாடல்

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: வெப்பம் திரைப்படத்திற்காக ஜிசானி பாடியிருக்கும் பாடல்.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 2:48 ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் கோல்டு வழங்கி கொண்டிருக்கும் திரைகானம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து தக்லைஃப் திரைப்படத்திற்காக தீ பாடியிருக்கும் பாடல்.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఠెల్లినిచిరిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే లవ్లీన్ నిగమ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की. बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई. ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों

0: कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल संशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमागुमी को हराया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत वितेदरसन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंक तालिका में 5वें स्थान पर चेन्नई ये मैच जीतकर शीर्ष 4 में प्रवेश करना चाहेगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial

0: था भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: தேநீர் நேரம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து அம்மன் கோவில் கிழக்காலே திரைப்படத்திற்காக கே ஜே யேசுதாஸ் சித்ரா இணைந்து பாடியிருக்கும் பாடல்

0: must apply through proper channel within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.spadmin.nia@gov.in. And the website is www.nia.gov.in. I repeat the website, it is www.nia.gov.in. Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for the prestigious post of a director in pay level 17. The recruitment will be through deputation, absorption or direct recruitment. Officers from central or state governments, universities, autonomous bodies and research institutions are eligible to apply. Detailed eligibility criteria, application procedures available on the official website, and the last date for application submission is 30 days from publication in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.mohfw.gov.in. Indo-Tibetan Border Police Force has announced recruitment for 6 posts of Assistant Commandant Engineer in Group A gazetted category. Both male and female Indian citizens, including subjects of Nepal and Bhutan, are eligible to apply. The post carries level 10 as per the 7 CPC. Online applications are open till 20th May 2026. Detailed advertisement, eligibility conditions and online application form is available on the official recruitment portal on the website, that is at www.itbppolice.nic.in. Jesus and Mary College, affiliated to the University of Delhi, has invited applications for the post of a principal. Applications are open for all eligible female candidates from Catholic women religious congregations. The last day to apply is 23rd May 2026. Full details, eligibility criteria and application format is available on the college website, that is at www.jmc.ac.in. Indian Institute of Management Raipur has invited applications for the post of a software developer and junior accounts executive. Candidates can check qualification requirements, experience criteria and application procedure on the official recruitment portal. The last day to apply is 17th May 2026. For details, kindly refer to www.iimraipur.ac.in/recruitment. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार।
2: रोजगार समाचारों के साथ मैं विनीता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, अमेठी। सिम्युलेटर इंजीनियर के लिए एक स्थान यहाँ रिक्त है। igrua.gov.in पर आप जाएं और इस वेबसाइट से समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग आशुलिपिक समूह ग एवं घ के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित पद्धति में आशुलिपिक समूह ग एवं घ परीक्षा 2026 का आयोजन होगा। भर्ती के बारे में और भी अधिक जानकारी आप परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति पर देखें, जिसे आयोग की वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा के संदर्भ में यदि और कोई भी शुद्धि पत्र हो, परिशिष्ट हो या फिर महत्वपूर्ण सूचना होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस। रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस, रिक्ति है 2।

0: और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की एक इकाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। पद का नाम है प्राचार्य और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 1 है, जो कि यूआर के लिए है। आवेदन प्रपत्र, आवश्यक योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं के लिए कृपया आप वेबसाइट www.vkm.ac.in को देखें। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं सहित प्रबंधक वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के पक्ष में आप भेज दें। विज्ञापन की तिथि 20 दिनों के भीतर वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी 221010 उत्तर प्रदेश पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित करें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का सुरक्षा निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाई द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या हैं उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदानों की गतिविधियों की भी हम आपको देंगे जानकारी, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नज़र। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: नमस्कार विशाल, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी।

0: This is Parikrama on 100.1 FM with me, Shagun Chopra, and Vishal Sharma today. Well, yes, Vishal was telling you about all that is coming up in the next half an hour, roughly. Well, and today, let me start with by extending heartfelt wishes to families around the world for good health, happiness, and strength to successfully overcome the challenges of daily life. And today, it's International Day of Families. We'll discuss more about it in our Dateline India segment. So let's start with the headlines.
1: जी शगुन, प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
0: BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism.
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया।
0: BJP MLA Rathindra Basu elected as new speaker of West Bengal Legislative Assembly.
1: और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।
0: So this is our segment Dateline India, and today, as we were telling you in the beginning, today it's International Day of Families. So, well, loneliness, financial stress and emotional distance, they grow across modern homes. Nowadays, it's pretty common. The International Day of Families 2026, therefore, it highlights why strong family bonds, they remain essential for child well-being, mental health and social stability in an increasingly unequal and uncertain world.
1: जी शगुन, और परिवार का जो महत्व हमारे जीवन में है उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। परिवार केवल खून के रिश्तों से बंधा हुआ एक समूह नहीं होता, बल्कि ये जीवन मूल्यों का पहला विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है जहां हम जीवन की वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं। और परिवार के भीतर ही व्यक्ति सबसे पहले प्रेम, त्याग, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सह अस्तित्व सीखता है। सहस्तित्व की जो भावना आती है, को एग्जिस्टेंस की, सबके साथ रहने की जो भावना होती है, वो वहीं सीखता है परिवार में। और यदि परिवार हमारे स्वस्थ हैं तो समाज भी स्वस्थ होता है, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज शगुन देखा जाए तो आवश्यकता केवल परिवारों को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें मूल्यों पर आधारित और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने की है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है, और युवाओं के सामने रोजगार को लेकर की भी कई चुनौतियां होती हैं, तो परिवार और खासतौर पर संयुक्त परिवार की आवश्यकता बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। संयुक्त परिवार केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं होते, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं, और इसमें संसाधन जो हैं साझा किए जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और किसी भी संकट का सामना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। और जो बड़े शहरों में, महानगरों में जो है अकेलापन, अकेलेपन की जो समस्या है, उससे जो अवसाद की समस्याएँ पैदा होती हैं, वो संयुक्त परिवारों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप याद करिए पुराना समय जब परिवार संयुक्त रहा करते थे, सारे जो प्रत्येक व्यक्ति के जो कष्ट होते थे, समस्याएं होती थी, सब उसको मिल बांट करके पता भी नहीं चलता था किस तरीके से जीवन निकल जाता था।
0: प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दे यूज्ड टू सॉल्व इट बाय टॉकिंग एक्चुअली इन कॉन्वर्सेशंस। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ द डे एज वेल। नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड द होल थीम हियर। ड्यूरिंग द 1980s एक्चुअली द यूनाइटेड नेशंस बिगैन फोकसिंग द अटेंशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू फैमिलीज। सो दिस स्टार्टेड इन 1980s। इन देन इन 1993 द जनरल असेंबली डिसाइडेड इन द रेजोल्यूशन दैट 15th ऑफ मे एवरी ईयर should be observed as the International Day of Families. So this happened in the year 1993. So this day provides an opportunity to promote awareness of issues which is related to families and also to increase the knowledge of social, economic and demographic processes affecting families. Families must become the first place where a child learns tolerance and compassion. Right, family members, they teach them. It should be a space where children are taught that life is not a competition. You were also talking about coexistence. A place where elders are not treated as burdens, but as invaluable treasures of experience, which they share with us. A place where women receive dignity, the children, they receive values, and youth receive

0: Achieve trust and confidence. Much of the growing violence in today's world, it stems from the weakening of dialogue and sensitivity within the families. Children are speaking to mobile phones, but not to their parents. Families may be living together physically, yet emotionally they are falling apart. Climate change, wars, economic instability, so many issues, they have made the entire world insecure. Whether it is the Russia-Ukraine war, the conflicts in West Asia, the greatest impact of these crises falls upon families. So millions are displaced. Children, they become orphans, and women face insecurity and exploitation.
1: जी, और इस साल का जो परिवार विश्व परिवार दिवस का जो आयोजन का विषय है वो है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण. ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं. ये असमानताओं को कम करने और बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायता के लिए एकीकृत और परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक ध्यान देने का आह्वान करता है. सामाजिक और आर्थिक प्रगति में परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और फिर भी कई परिवारों को आय की अनिश्चितता, देखभाल संबंधी सीमित सहायता और ज़रूरी सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पर्याप्त सहायता न मिलने पर छोटे बच्चे वाले परिवारों में गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और समग्र कल्याण पर बहुत लंबे समय तक असर देखने को मिलता है. आय में जो स्थिरता होती है और देखभाल संबंधी सीमित सहायता और बच्चों के विकास में जो बाधा आती है, वो इन सभी समस्याओं के साथ साथ जो है दिव्यांगता पर आधारित असमानताएं भी इसमें जुड़ जाती हैं.
0: Well, the relationship between family stability and economic inequality, it is characterized by a bi-directional cycle where financial stress undermines domestic security, while stable families, if we talk about stable families, they serve as a critical buffer against economic hardship. So on the International Day of Families 2026, experts, they have highlighted that growing global inequality and inflation, they are directly contributing to emotional instability, emotional exhaustion actually, within the modern homes. And amid these global crises, the family, they play an important part. Families remain the one institution that gives broken human beings the courage to live again with happiness.
1: जो आपने इन्फ्लेशन की बात करी और ग्लोबल इनएक्वलिटी की बात करी, तो इस ये जो आर्थिक दबाव है ना, इसके कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब देखने को मिल रही हैं. और इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो भारतीय माता पिताओं में अवसाद का खतरा 12% तक बढ़ जाता है जब उनके वयस्क बच्चे बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं. और इसके अलावा बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने भी एक सैंडविच जनरेशन ले ऑफ की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जहां करियर के मध्य में नौकरी छूटने से भूमिकाओं में उलटफेर हो जाता है और परिवार के भरण पोषण का जो बोझ है वो छोटे बच्चों पर आ जाता है.
0: वेल ट्रू. सो इफ वी फोकस ऑन आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, इट इज ऑल देयर वाज देयर हैज ऑलवेज बीन फैमिली सिस्टम. इट हैज बीन बेस्ड ऑन फैमिली सिस्टम. इन इंडिया द फैमिली इज नॉट, इट हैज नेवर बीन मियरली अ सोशल अरेंजमेंट बट अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. And the epics, let me highlight the epics, Ramayana, Mahabharata, they are not merely tales of war, they are profound narratives of family values, relationships, duties. And let me highlight how the Indian philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family, it offers a vision that can eliminate war, violence, terrorism and hatred if truly it is practiced. And unfortunately, well, the consumerist culture has now entered families as well. Relationships are increasingly measured on the scale of profit and loss. Too bad. And tolerance is decreasing, while expectations, they are rising. So relationships breaking over trivial issues, they indicate that while we have increased comforts, we have lost sensitivity. Each person is going through some kind of struggle in between. So the true strength of a family lies not in wealth, but in trust. So where trust survives, even scarcity turns into celebration.
1: आपने टॉलरेंस की बात की जो लगातार कम होती जा रही है, और ये हमारी सहन शक्ति जो कम होती जा रही है ना शगुन, उसी के चलते हम अब किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं. हमें अपने आराम चाहिए, अपनी आदतें, हम अपना जो भी हम देखना चाहते हैं वो करना चाहते हैं. कोई भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उपस्थित हो जाता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है आकर के, तो लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. तो ये तो दूसरे की उपस्थिति जो है, परिवार के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति भी अब जो है सहन नहीं होती है लोगों को. ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है. जो इन सब

0: चीजों की जो आपने बात की, इन दबावों के बाद बावजूद परिवार ही है जो बच्चों की भलाई और भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक एक एक एक सहारा बनता है, एक बड़ा सहारा बनता है और उन्हें सुरक्षा भी देता है। कई घरों में आप अगर अपने अगर हम अपने दादियों की या नानियों की बात याद करें तो महिलाएं जो हैं पहले के समय में सावधानी से बजट बनाती थीं और छोटी छोटी बचत करके, जिसका किसी को पता भी नहीं होता था परिवार में, और अचानक आने वाली जो बड़ी आर्थिक परेशानियां जब आती थीं उस समय वो संकट मोचन का काम करती थी उनकी वो बचत, और परिवार को महिलाएं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थीं।
1: Well, how great is that? And you know, we are also talking from around 10 minutes and it's such great fun to have these kind of conversations. And I think we should urge our listeners also to have conversations like this. Whatever happens in your daily life, we should encourage them also, you know, to talk to their family members. It's so cool and it's wonderful. And as these global disparities, they widen, this year's observance will spotlight gaps in income, in education, healthcare, digital access and essential services that shape children's life chances. It will emphasize the need for integrated social protection systems. This includes child benefits, parental leave, affordable childcare and early education, and this will thereby strengthen family resilience, reduce poverty and promote equal opportunities.
0: Aur ab समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं कि आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं।
1: सो विशाल विल फर्स्ट हेड टू गोवा। सो द गोवा गवर्नमेंट हैज रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू सपोर्टिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द स्वयंपूर्ण गोवा मिशन एंड स्टार्टअप सपोर्ट स्कीम्स। Chief Minister Pramod Sawant said women in Goa are increasingly stepping into entrepreneurship and self-employment. Let's find out more details from our correspondent.
2: Women in Goa are taking the lead in starting businesses. Chief Minister Pramod Sawant said that one-third of the beneficiaries under these schemes are women entrepreneurs. The Chief Minister said there is a common misconception that startups are only meant for IT sector. He clarified that women can also benefit from the startup scheme and successfully start businesses in many other fields. He was speaking during the expanded launch of the Women Entrepreneurship Program held at Lok Bhavan in collaboration with Niti Aayog and Rural Development Department. Dr. Sawant said the Goa government is providing several incentives to help women become financially independent and support them in marketing the products they create. He urged women across the state to make use of these schemes to expand and strengthen their enterprises. Under the Women Startup Initiatives, women entrepreneurs can avail loans up to 10 lakh rupees to start businesses. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
0: और अब बात करेंगे विदर्भ की। विदर्भ में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत पूर्ति संचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के रजत जयंती समारोह के अवसर पर नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और इस विषय में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को जल संपन्न बनाने पर बड़े पैमाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि फार्म तालाबों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग अकोला, वाशिम और बुलडाणा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया गया है, जिससे पश्चिम विदर्भ में भू जल स्तर बढ़ा है।
4: हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खुलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहाँ किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहाँ तालाब बनाना। इसके दो बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3500-4000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी आया और वहाँ अच्छी क्रांति है। दूसरा एक बुलडाणा पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की, ये बुलडाणा से अजंता तक रोड था, हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खुलीकरण किया और ये मिट्टी पूरी रोड में डाली और इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई।
3: ऐसे कई प्रयासों पर नितिन गडकरी ने चर्चा की। देश भर से प्रमुख जल विशेषज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ इन आयोजनों में भाग लेने वाली है। सम्मेलन का विशेष आकर्षण पानी फाउंडेशन के संस्थापक और प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान, नाम फाउंडेशन के अध्यक्ष नाना पाटेकर और सचिव मकरंद अनासपुरे की उपस्थिति होगी। परिक्रमा के

0: 75,238, while the Nifty dropped 46 points to settle at 23,644. The broader market on the National Stock Exchange also ended lower.
1: कार्यक्रम के इस हिस्से में बात करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन्हें याद भी करेंगे और साथ ही साथ उन व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था।
2: During the First War of Independence, on the 15th of May 1857, supreme command of the army was given to Mirza Mughal. Mirza Mughal was son of Bahadur Shah Zafar. He took a leading part in the First War of Independence of 1857. On the 15th of May 1857, a darbar was held in Red Fort and new officers of the Hindustani army were appointed by the emperor. The supreme command of this army was given to Mirza Mughal. He was titled as Commander-in-Chief Bahadur and his honorific title was Sahib-e-Alam.
3: In his capacity as Commander-in-Chief, Mirza Mughal worked as a liaison officer between the civil and military departments and formed a link with warriors on the one hand and the merchants and local chiefs on the other. He continued to play an important role in military administration. After the reoccupation of Delhi by the British, Mirza Mughal was captured on the 22nd of September 1857. The British took him near Khuni Darwaza and asked him to take off his clothes. He was shot dead and his body was driven to the Kotwali and laid down outside the building before he was buried. We salute this great nationalist.
2: We also remember Martyr Harpal Singh. He was in the English East India Company Army but left it during the First War of Independence of 1857 and joined hands with rebel forces with a pledge to overthrow the oppressive foreign rule. He fought the British at several places and was finally caught during a confrontation. He was charged with mutiny against the British Empire and sentenced to 7 years jail. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858, where he died due to physical torture in captivity on the 15th of May 1858. We salute.
3: We also remember Martyr Sukhdev Thapar. He was born on the 15th of May 1907 in Ludhiana. Sukhdev Thapar had witnessed the brutal atrocities that the Imperial British Raj had inflicted on India, which led him to join the revolutionary freedom fighters.
1: आज पुण्यतिथि है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की। कुछ लोग सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान सैन्य अधिकारी थे फील्ड मार्शल कोंडडेरा मडप्पा करियप्पा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त करने वाले करियप्पा ने भारतीय सेना को नई पहचान और मजबूत दिशा दी। इस पद पर वे 1953 तक रहे। उनका मानना था कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और देश के प्रति समर्पण होता है। सैनिकों के बीच वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे बल्कि प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक भी माने जाते थे। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा और योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
0: Today, listeners, we are also remembering Emily Elizabeth Dickinson, the poet. The Poetry Foundation describes her as having created in her writing a distinctively elliptical language for expressing what was possible but not yet realized. Although she was a prolific writer, only 10 of her nearly 1,800 poems were published during her lifetime. Today, her poems are widely regarded as groundbreaking with their use of lean descriptions and slant or off-rhythm.
1: आज ही पुण्यतिथि है कालिंदी चरण पाणिग्रही की। शब्दों को भावनाओं की ताकत देने वाले महान साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही को उड़िया साहित्य का प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास हो, नाटक साहित्य की लगभग हर विधा में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी रचनाओं में समाज, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। इनकी प्रसिद्ध कृति की बात करें तो माटीरा मणिषा आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इन्हें उड़िया साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण पाणिग्रही को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।
0: टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग द कंट्री सिंगर सॉन्ग राइटर एक्ट्रेस एंड ऑथर वैलोरी जून कार्टर कैश। अ 5-time ग्रैमी अवार्ड विनर, शी वाज अ मेंबर ऑफ द कार्टर फैमिली।

0: आज ही के दिन जन्म हुआ था महेंद्रनाथ मुल्ला का। कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला। और 1926 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान INS खोखरी के कप्तान थे ये। और युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, तब इन्होंने अपने साथियों की जान बचाने को सबसे पहले महत्व दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए। उनका ये साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय नौसेना के इतिहास में अद्भुत उदाहरण माना जाता है। देश के प्रति उनकी वीरता और सेवा को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: वेल, टुडे इट्स आल्सो माधुरी दीक्षित नेने'स बर्थडे। So she has appeared in over 70 Hindi films, attaining nationwide stardom that influenced Indian popular culture.
2: जी, आज बॉलीवुड की धक धक गर्ल का जन्मदिन है। और माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अभूत से अपने फिल्मी जीवन की करियर की शुरुआत की थी। और अभिनेत्री के रूप में देखा जाए, जिस फिल्म से इनको पहचान मिली वो थी फिल्म तेजाब।
1: एग्जैक्टली,
2: और तेजाब फिल्म से ही इनको पहली सफलता मिली और इसके बाद ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। और माधुरी दीक्षित ने अगर फिल्मों बात करें तो बहुत लंबी सूची है, फिल्मों की लिस्ट है। दयावान, राम लखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन जैसी सफल फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। और इनकी मुस्कान और चेहरे के भाव और इनका जो नृत्य जो था वो दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता था।
1: सो यू टॉक्ड अबाउट हम आपके हैं कौन, वी आल्सो हैव अ डायलॉग फ्रॉम द मूवी, लेट्स लिसन इन।
2: जी जरूर।
3: समझ गई।
4: क्या?
3: खड़े होइए।
4: जी
3: खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं।
4: जी
3: जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने।
4: नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं।
1: सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन।
2: जी, और हर किरदार में माधुरी ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी है।
1: So her accolades, they also include 6 Filmfare Awards and in 2008, well, she was awarded with Padma Shri, right?
2: जी, तो उनकी फिल्म का एक गीत जरूर सुना जाए।
1: जी।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर

0: मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05, ஆகாஷ்வாணி.

0: अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च षड् दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानाम् आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं।

0: 16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना UAE देशे सद्यः एव जातानाम् आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करेज और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने
0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन सम्बोधयन् सः कठिन काले UAE नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000 ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000 श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेश मंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चां उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। NTA इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 नीट UG इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपर लीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च CBI अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। NTA इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं NTA इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: प्राची नमस्कार गुड इवनिंग अर्जुन
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड लोअर Sensex drops 161 points, Nifty settles below 23,650. India and the UAE agree to launch new initiatives to promote a comprehensive energy partnership. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट सेंसेक्स लगभग 161 अंक फिसला निफ्टी 23,650 के नीचे बंद हुआ भारत और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर सहमत हुए और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े

0: advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, आइए अब जान लें कि आज कारोबारी सत्र कैसा रहा। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट आई। उतार चढ़ाव भरे सत्र के दौरान तेजड़ियों और मंदड़ियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। मिड कैप 100 में लगभग 0.5% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले बाजार धीमी बढ़त के साथ खुले, लेकिन सत्र के अधिकांश समय तक सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार करते रहे। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण कारोबार के अंतिम घंटे में दोनों ही सूचकांकों ने अपनी बढ़त गंवा दी।
0: Benchmark domestic equity indices reversed earlier gains and ended around 0.2% down in volatile trade today. Sensex fell by 161 points to close at 75,238, while Nifty dropped 246 points to settle at 23,644. The broader market on the NSE also ended lower. The mid-cap 100 dipped over 0.4%, while the small-cap 100 lost 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note but managed to trade in positive territory for most of the session. However, both stock market indices trimmed their early gains in the final hour of trade amid profit booking at higher levels and a rise in crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा स्टील, इटर्नल और रिलायंस, तीनों ही में लगभग 2% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस और टेक महिंद्रा, दोनों ही में 2% से अधिक का उछाल आया। उधर पावर ग्रिड के शेयरों में 1.3% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 25 sectors ended in negative territory. Among the top losers, metals shed 2%, realty lost over 1.8%, and PSU banks as well as oil and gas dropped 1.8%. In the top gainers, IT rose over 1%, Focus IT climbed 1%, and services added more than 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, 1,705 companies advanced, and 169 companies remained unchanged.
1: और अब बात रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.15 पर चल रहा था। सिद्धार्थ, कारोबार का ये जो हफ्ता है उसमें आज आखिरी दिन है और हमने देखा इस पूरे ही हफ्ते में लगभग 4% बाजार गिरे और आज हमने देखा 0.2% का गिरावट देखी। ऐसे में आज के कारकों को आप कैसा देखते हैं, आप क्या मानते हैं कि किस वजह से बाजार में ऐसी गिरावट हमें देखने को मिल रही है?
2: नहीं, देखिए प्राची, जहाँ तक बाजार की बात है, मुझे लगता है जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुई है तो बाज़ार पे कहीं ना कहीं उसके जो इम्पैक्ट है, जो उसके इफ़ेक्ट है, वो जो है कहीं ना कहीं मार्केट को, पूरे मार्केट सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से ग्रिप्ड है। वेस्ट एशिया का जो भी इम्पैक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था पे, खासकर जो क्रूड ऑयल प्राइजेज जो महंगी हुई, क्रूड ऑयल के जो दाम हैं जो आप तकरीबन आज भी $109 प्रति बैरल है, और जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुई थी, जब ये ईरान और अमेरिका का युद्ध जिसमें इसराइल भी शामिल है अमेरिका की तरफ के साथ साथ, तो तब तकरीबन $70 पर बैरल थी। तो अब कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक कंटिन्यूस इतने हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस का, और जब और भारत जैसा देश जो कि तकरीबन अपनी 85-90% जो मांग है, जो तेल की आपूर्ति है, वो इम्पोर्ट करता है, वेस्ट एशिया से ही ज़्यादातर इम्पोर्ट होता था अभी तक, अब हमने डाइवर्सिफाई किया है जब से ये क्राइसिस आई है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महंगाई पे दिखेगा। अब दिख रहा है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जो कल डेटा आया WPI पे काफ़ी जो है उसमें बढ़ोतरी दिखी, तकरीबन 42 मंथ हाई था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ऐसी आशा की जा रही है। CPI भी ऑलमोस्ट 3.5 हो चुका है अप्रैल का जो डेटा आया, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन, एक्टिविटी

0: दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो फिजिकल जो मैथ्स है वो भी कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर है, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चुनौतियां जो अब अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि ये जब जितना लंबा खींचेगा उतना निगेटिव्स अर्थव्यवस्था के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं शायद उस सब का इम्पैक्ट बाज़ार पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाज़ार की जो प्रेजेंट कंडीशन है।
1: आज हमने जैसा देखा कि बाज़ार फ्लैट नोट पर खुले, फिर थोड़ा सा उछाल आया, फिर थोड़ा सा बाज़ार गिरा, और ये इस तरीके के हमने काफ़ी बार उतार चढ़ाव देखने को हमें मिला बाज़ार में, और उस पर हम बात भी कर रहे थे पीछे शो से पहले। तो इसको आप कैसे रेखांकित करते हैं आज की ट्रैजेक्टरी को बेसिकली?
0: नहीं देखिए, शायद कहीं ना कहीं बाज़ार मतलब किसी ना किसी इज़ लुकिंग फॉर ए रे ऑफ होप, और एक आशा लग रहा था कि जब ट्रंप साहब अपनी चीन की यात्रा शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि वो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो चाइना जा रहे हैं और अब चाइना चीन की भी मदद मांगेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस को, ईरान को ये कन्विंस करने के लिए कि जो है वो समझौता करें और इस जो युद्ध है इसका अंत हो। लेकिन जो जिस तरह की उनकी यात्रा रही, ऐसा कोई बहुत स्पष्ट उसमें से संकेत निकल के नहीं आए कि चीन ने कोई उन्हें स्पष्ट भरोसा दिलाया हो कि वो भी ईरान से बात करेगा और कुछ इस तरह की पॉजिटिव बातें निकल के आएंगी। और ना केवल वो, साथ साथ चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको लेके भी बहुत ज़्यादा आशा लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसे कोई ठोस जो है परिणाम देखने को मिले नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी एक बड़ा असर था। फिर आज क्रूड ऑयल, चूँकि ये अनिश्चितता बनी हुई है, ये दिख रहा है कि आगे स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं दिख रही, लग रहा है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस आने वाले समय में भी चलेगी। तो और अमेरिका ने फिर से धमकी दी है ईरान को कि अगर अब वो नहीं माना तो उसका पेशेंस जो है ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ये है, प्लस अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी इसका असर असर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे सब जगह इन्फ्लेशन का या महंगाई का जो फियर है या जिन कह लें उसको, वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सारे जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इस तरफ अभी तो अपने रेट्स होल्ड किए हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे रेट्स उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक स्थिति लग रही थी कि सब जगह मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटाने की बात हो रही थी इकॉनमी, तो वो कहीं ना कहीं फियर भी बाजार में दिख रहा है।
2: सिद्धार्थ, वी हैव सीन दैट फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम ईरान, रशिया, ब्राजील हैव बीन इनवाइटेड टू इंडिया इन ऑर्डर फॉर अस टू डिस्कस अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई लेड बाय ऑयल एंड गैस। बट इफ यू गो बैक टू द इक्विटी मार्केट्स, द DIIs वर द नेट सेलर्स टुडे टू द ट्यून ऑफ 1,958 crore rupees, एंड द FPIs were the net buyers in the market. How did that happen? Why this reversal? Because typically the short covering has always been by the domestic institutional investors. Our fundamentals are right. Fourth quarterly earnings have been quite positive. How is it that the DIIs are the net sellers today?
0: So Arjun, I would say I think the important part of your question is that FIIs are net buyers. So, and DIIs, you saying the domestic institutional investors obviously are selling maybe because of profit booking. But I would say the important point or the important takeaway from your question is that that FIIs are net buyers today. And I think it is directly linked to a report which came in yesterday that the Indian government on the advice or on the suggestion of the central bank, the Reserve Bank of India, is likely to completely waive the tax on interest payments on the debt part of the which foreign institutional investors pay on government bonds. So I think that is the kind of hope which is building in, because this has been a big demand from the foreign institutional investors that a withholding tax of almost 20% is imposed on their whatever debt the investments made into the debt, Indian debt market, especially the government bonds. So I think that is giving a ray of hope to the foreign institutional investor that Indian government is ready to take a look at cutting tax on the government debt, on the government bonds. And I think that is also bringing that them back to the Indian markets.
2: We saw profit booking even in Bank Nifty today. It went down by almost 1%. 419 points the Bank Nifty fell ahead of the central bank meeting on

0: दशमलव 3.1% बढ़कर 5 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सिद्धार्थ, इतने मुश्किल समय में ये आंकड़े भारत ये आंकड़े हमारे लिए और हमारी अर्थव्यवस्था में जिनका विश्वास है उनके लिए कितने मतलब एक खुश करने वाली बात है कि ये बेहतरीन आंकड़े निकल करके आए हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा प्राची, बहुत ही उत्साहवर्धक है। बिकॉज अगर आप जब से देखेंगे, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कार्यभार संभाला है, तब से कुछ ना कुछ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उन्होंने उथल पुथल के रखा। जब वो आए तो टैरिफ का जो है उन्होंने एक जो अनलीश किया पूरी दुनिया के ऊपर, टैरिफ्स लगाए, हाई टैरिफ्स, उसमें हिंदुस्तान भी था। और पिछले 1.5 साल से हमारे एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, लेकिन भारत सरकार ने उससे निपटने के लिए, मैं कहूँगा, हमने जो है तमाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। जो लास्ट था अभी न्यूजीलैंड के साथ हमने कंक्लूड किया, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूएई के साथ हमारे जो है रिश्ते या बायलैटरल ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इस तरह से हमने जो है एफटीएस किए। बिकॉज हमको अपने एक्सपोर्टर्स को जो है उस तरह का प्रोटेक्शन देना था, नई मार्केट ढूंढनी थी और नए प्रोडक्ट्स हम और जो है दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसके साथ साथ जो हमने अपने तौर पे, सरकार ने अपनी जो पॉलिसीज़ के तौर पे कैसे एक्सपोर्टर्स को जो है आसानी से और सस्ता क्रेडिट अवेलेबल कराए, चाहे जिस तरह तरह की स्कीम्स, जैसे एक रोड टैप करके स्कीम है जिसमें जो टैक्सेस वो देते हैं जब वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लोकल टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं, तो कैसे वो उनकी जो एक्सपोर्ट की जो कीमत है जो प्रोडक्ट की उसमें शामिल ना हो, उसको रीइंबर्स किया जाए, इस तरह की स्कीम्स, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को और आकर्षक बनाया जाए। तो तरह तरह के स्टेप्स पिछले 1 साल 1.5 साल में सरकार ने लिए। साथ साथ जो जब से सरकार आई है तब से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स की जो स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज हम ऑलमोस्ट मोबाइल में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो ये सब मुझे लगता है कारण है जो हम देख रहे हैं कि आज इस साल के शुरू के पहले महीने में हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 14% की बढ़त दिख रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में।
0: जी,
2: In more news, India's forex reserves rose by $6.2 billion, standing at $696 billion for the week ending May 8. According to RBI, gold reserves jumped by $5.6 billion to $120 billion. Foreign currency assets, the largest component of the reserves, also advanced by $562 million to $552 billion during the week. Meanwhile, special drawing rights, SDRs, increased by $84 million to $18.87 billion. Countries' reserve position with the IMF also rose by $12 million to $4.87 billion. The country's unemployment rate for persons aged 15 years and above remained broadly stable at 5.2% in April, slightly up from 5.1% in March this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, the monthly labor force and unemployment data, the rural unemployment rate advanced to 4.6% last month as compared to 4.3% in March. In contrast, urban unemployment edged down to 6.6% in April from 6.8% in March. The overall unemployment rate among female aged 15 years and above rose slightly to 5.4%, while urban female unemployment rate declined to 8.5% last month at the lowest level recorded since April 2025. The overall male unemployment rate also witnessed marginal uptick and stood at 5.1%. And let's have a look now at the petroleum market.
0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। इस बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
2: Global crude oil prices rose today amid lingering geopolitical uncertainties. Brent crude was trading over 2.4% up at $108.30 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 2.9% up at $104.14 per barrel when reports last came in. With the uptick in inflation in India, and for that matter the producer price index in the US, do you see the geopolitical uncertainties becoming a certainty in the near future? We have the BRICS foreign ministers come in here. How do you see the crude oil market playing out? Because austerity measures also being announced.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर

0: काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युईची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. After concluding his UAE visit, the Prime Minister is now en route to the Netherlands on the second leg of his visit. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the 6-day tour. Foreign ministers of BRICS member countries have reiterated their commitment to reform and improve global governance. The outcome document of BRICS foreign ministers' meeting said the member countries reiterated their commitment to promote equitable, legitimate, democratic and accountable international and multilateral system. The ministers noted the current global context of polarization and distrust encouraged global action to strengthen international peace and security. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet. The ministers stressed the importance of ensuring the exercise of navigational rights and freedoms of vessels of all states in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait in accordance with international law. The ministers appreciated that BRICS under India's chairship will further contribute to enhancing cooperation through sustained engagements. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi has said that India can play a greater role for peace in West Asia. Addressing a press conference in New

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने पांच देशों के दौरे से पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया है कि सदस्य देशों ने एक न्यायसंगत, वैध, लोकतांत्रिक, जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण

0: लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की बहुत सराहना और समर्थन करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराघची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों के गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराघची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही। उधर IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE. Marking the first stop of his five-nation tour, the Prime Minister reaffirmed India's solidarity with the leadership and people of the Emirates. During the discussions, following the engagements, Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. During the visit, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan presented a Cerebras chip to Prime Minister Narendra Modi. These advanced chips are set to power India's upcoming 8 exaflop supercomputing facility, significantly boosting the India AI mission and strengthening the country's next generation artificial intelligence capabilities. Foreign ministers of BRICS member countries have reiterated their commitment to reform and improve global governance. The outcome document of BRICS foreign ministers' meeting said the member countries reiterated their commitment to promote equitable, legitimate, democratic and accountable international and multilateral system. The ministers noted the current global context of polarization and distrust encouraged global action to strengthen international peace and security. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi has said that India can play a greater role for peace in West Asia. Addressing a press conference in New Delhi today, Mr. Araghchi said there's no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass

0: को पहुंच रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के

0: बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: Under the 3 pillars of BRICS strategic partnership.
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे।

0: एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर

0: इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
3: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India's Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Saman Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the

0: Germany, and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we will have the India Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर। सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं। लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे, तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है।
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है। हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें फिर एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर।
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ आरंभ भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है, तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे।
2: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है, नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है। सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी।
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं। हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें, यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए।
2: सर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है, उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी की जो मिशन लाइफ है उसके संबंध में मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं और बहुत तरीके से हम लोग उसको अपने आप ही ला सकते हैं। जैसा अगर आपको उदाहरण दो साइकिल, तो साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे इतना बढ़िया है और इतना ज्यादा है कि आप दो शहरों के बीच भी, अगर वो 40, 50, 60 किलोमीटर दूर भी हो, वहां आप साइकिल चला के भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पे जितने इनोवेटिव तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है, ये देश जो है सो समुद्र से कई मीटर नीचे होने के बाद भी आप पानी, जब कभी बाढ़ होता या पानी की कभी शॉर्टेज होता या पानी सही स्थिति में नहीं होता, साफ नहीं होता, उन सब की तकनीक इनके पास है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सबको भी हम अपने मिशन लाइफ में डिफरेंट जो उसके आयाम है, विभिन्न आयाम है, उनसे इनको जोड़ सकते हैं और भारत में हम लोग एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हम लोग इसमें स्थापित कर सकते हैं।
2: धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत
3: शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद
1: प्रोफेसर जोशी। From an Indian context, how can this partnership benefit our growth priorities? We've set ambitious goals for ourselves. We have a certain window in which we need to leapfrog towards development. And therefore, these partnerships with the smaller countries here in the region, but very, very technologically advanced, they can help us majorly in our

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। आबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी दूसरी यात्रा के चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और इनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुटुरपत्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कल मेडिकल कॉलेज में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह फैसला ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप।

उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हाल ही में हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेब्रस चिप भेंट की। ये उन्नत चिप्स भारत की आगामी 8 एक्स फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को शक्ति प्रदान करेंगी, जिससे भारत के एआई मिशन को बढ़ावा मिलेगा और देश की अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए

0: दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि सदस्य देशों ने एक न्यायसंगत, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान भी किया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य और सहयोगी देश की स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की बहुत सराहना और समर्थन किया।
3: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
4: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में हुई वार्ता को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप की 3 दिन की चीन यात्रा आज समाप्त हो गई। दोनों नेताओं ने कई दौर की वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार, ईरान विवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिर आर्थिक संबंध बनाए रखने, सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने भी यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि वे शी जिनफिंग की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि ताइवान, दुर्लभ धातुओं के निर्यात या सेमीकंडक्टर व्यापार पर कोई सहमति नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्षी ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जल डब्लू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 24 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में घरों, एक स्कूल और अन्य नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने मुख्य रूप से कीव को निशाना बनाकर 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया है। भारत पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: This is FM Gold. Please stand by for the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन

0: के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसे ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख

0: कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पहले महीने में पुलिस ने 806 लोगों को गिरफ्तार किया और 724 मामले दर्ज किए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their majesties, the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded investment.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डबरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र

0: रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में

0: कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their Majesties the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
0: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. Ministry of Finance has notified about it. The special additional excise duty on diesel exports have been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel ATF has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees.

0: 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் உஸ்தாத் ரஷீத் கான் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆகர்ஷதா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பந்தநல்லூர் பி வி காளிதாஸ் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். கோவிலூர் கே ஜி கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் தவில்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं. हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया. 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है. प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया. अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है. भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है. होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
2: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की. उन्होंने उनकी अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है. वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है. डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है. विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

0: संशोधित दरें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच अस्थिर युद्ध विराम रविवार को समाप्त होने वाला था। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से कोलकाता में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his 5-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Chetten and will call on their majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of putting such restrictions on foreign travel. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to the official gazette notifications issued by Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel, that is ATF, has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Empowerment of Women Committee. BJP MP from Lok Sabha, Dr. D. Purandeshwari, will be the chairperson of the committee. The committee comprises of 18 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. The members of the lower house include prominent personalities like Hema Malini, Harsimrat Kaur Badal and Ikra Chaudhary. On the other hand, from the upper house, Sudha Murthy, P.T. Usha and Swati Maliwal are included. Vice President CP Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming the office. During his visit, the Vice President will attend the Statehood Day celebrations of Sikkim in Gangtok. Governor

அன்னையும் தந்தையும் நாராயண.